0: क्या करते आप?
1: भगवान की काका जा
0: क्यों रे निखट्टू भाड़े के टट्टू और नहीं कोई तुझको काम। जब देखो ये पुस्तक लेकर जपता है तू राम नाम।
1: अरे भगवान नाम राम का लेना तो कोई पाप नहीं है।
0: पकी पकाई देने वाला घर में कोई तेरा बाप नहीं है।

उठो तब क्या नाथ, यहाँ कहीं से ला दे मुझको तोला भर अफ्यून।

भैया पढ़ी नहीं रामायण, अरे ज्योति का है मेरे पीछे पड़ती डायन।

0: शराबी है।
1: लेता है मेरे बाप का नाम।
0: तेरा बाबा बड़ा शराबी।
1: मेरा बाबा?
0: हाँ, तेरा बाबा बड़ा शराबी।
1: मेरा बाबा?
0: हाँ, तेरा बाबा।
1: मेरा बाबा?
0: तेरा बाबा। तेरा बाबा? तेरा बाबा? तेरा बाबा? तेरा बाबा? तेरा बाबा?
1: क्या हो गया इनको? हाय राम,
0: बदल गए।

0: बनती है जी। आई आई
1: हट गलियां किनारे एक

حسن والوں کا اکھاڑا اکھاڑا ہو گیا، اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنا

मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। दो दो उल्फत के बाजार होगा कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, वो हो बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार कैसी उलझन में है प्यार, बड़ी हाँ बड़ी हाँ बड़ी।

दिल धड़कने लगा कर की चकरा गया गया गया गया। मेरी खातिर दो दो यार, मेरी खातिर तो दो यार, लड़ने मरने को तैयार। बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, हाँ हाँ बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार। बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओ हो बड़ी मुश्किल है।

बड़ी, हाँ बड़ी, हाँ बड़ी मुश्किल है।